0: ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରିବାଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ, କି ଅନ୍ୟକୁ ପୀଡ଼ା ଦେବା ସମାନ ପାପ କିଛି ନାହିଁ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों के विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: And together becoming a force multiplier.
1: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर

0: की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोता बंधु माने कार्यक्रम सुनिछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररु आरंभ करूछु आजिर वंदना। प्रथमे कंठदान करिछंती तृप्ति दास, शिल्पी गाइछंती रघुनाथ राउत को रचना। तुमे तो अल्लाह, तुमे तो जीशु, तुमे तो प्रभु राम, रूप तुमर अनेक हेले एक ही सर्वनामा।

सुदृढीकरणञ्च भविष्यति। अस्मिन् अवसरे श्रीशाहः मादकद्रव्य नियन्त्रण विषयम् अग्रिम कार्ययोजना प्रतिवेदनञ्च विमोचयिष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अवदत् यत् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार संधि वैश्विक अर्थव्यवस्थायाः समर्थनाय बलगुणकस्य कार्यं करिष्यति। ह्यः लंदन नगरे भारत वैश्विक मंचस्य यूके भारत सप्ताहं संबोधयन् श्री गोयल अवदत् यत् यूनाइटेड किंगडम्स देशेन सह कृत मुक्त व्यापार संधि अद्यावधि भारतस्य सर्वाधिक व्यापक संधि वर्तते। अस्मिन् मासे एकविंशति दिनांके आयोजितायाः नीट यूजी पुनः परीक्षायाः अस्थायी उत्तरकुञ्जीनां दर्शनार्थं प्रश्नान् आह्वानं कर्तुं च राष्ट्रिय परीक्षण संस्थायाः गवाक्षम्

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिमी एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव के वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राष्ट्रीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला,

कल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थीं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: क्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रूपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रूपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रूपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपए का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टिपत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के

0: माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रूपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
1: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काले रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
2: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिन्दुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है, पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, एक

आकुमारी हिमालय भारत बर्षर परिव्याप्ति केउठी साधारण तापमात्रा केउठी विजुक्त तापमात्रा ए विजुक्त तापमात्रा रे मध्य आम सिपाही अहरह शीतको खातिर नकरि बरफपातको खातिर नकरि आम देश सीमान्तरे जमि रहिछन्ति आम देशको शत्रु अनुप्रवेश गरिपारिबेनि बोली आम देशर भूस्वर्गको लुण्ठन गरिपारिबेनि बोली ए महान त्याग उत्सर्ग देशवासीको दैछि महान सुख सही सिपाहीमाने हि आम देशर प्रकृत वीर प्रकृत नायक सबुरि भितरे सद्भाव शिखाइ दिअन्ति सेमाने एमिति देशप्रति सेवा मनोभाव वृद्धि करी।

0: Please be seated.
1: Thank you. Well, sir, any information regarding law and order situation in Amritsar?
0: Quite precarious. Khud sambhal.
1: What do you mean, sir?
0: Apne ek din da Lomahasankar council le chamki uthe General Dyer. You'll be surprised.
1: Well, tell me.
0: मतलब जितनी सब इंसिडेंट घटी जाए छे तो भीतरे द इंसिडेंट अबाउट मिस मास्टर सर इज क्वाइट पैथेटिक मुझसे मिशनरी भद्र महिला का दुखजनक घटना पाए खूब मनमाहत है पड़ी
1: छे। स्टॉप इट प्लीज। ओह आई एम सॉरी आई लॉस्ट माय टेंपर प्लीज कैरी ऑन। मिस मास्टर शेरवुड का जहां सब घटेला प्लीज टेल मी इन डिटेल।
0: Listen, Brigadier. That was the year 1919. Eka Subhaveka Sakala Hatat Mudekili Subhaja Trinkara Gute Potara Mobamaruka Maria Suchi. What? Unlawful gathering in front of my bungalow?
2: Bhai bhai, say deputy commissioner Tano kotha ke dabi suni banai. Ek thar bhara samasta dhara. Dharlo bhai
3: bhai. I declare this assembly unlawful. Either you disperse immediately or else I shall order to fire within a few seconds.
0: No, it is too much. The situation is worsening fast. You soldiers, I order you, fire!
1: Could the natives dare to bring back your bungalow? It is Shahas Semanankar.
0: Yes, Brigadier Dyer. A firing pare pare was sprinkled native Rakitajan bank emplacement to be attacked.
1: Oh, please, I can't hear it.
0: How Sabasiko, Miss Master Sirut was civil beaten.
1: Is that so? Johnny Ingrace Bhadra Mahiranka Priti, Yeti Avama.
0: Semane Miss Sirudunko Kali Pitilini. Kicked and left her for death. Avashya pare, she was rescued and sent to the hospital by a Hindu family.
1: Is that all about the incident, sir?
0: Yes, Brigadier Dyer. I'm tired of all this worse situation in Amritsar. Please take whatever step you consider necessary to re-establish a full civil control in Amritsar. आपने उपयुक्त पदक्षेप नहीं अमृतसर कड़ा श्रृंखला फेरे आने वाला व्यवस्था करो तो ब्रिगेडियर डायर।
1: ओके सर आई एम प्लानिंग फॉर इट विद इन द आवर।
4: सावधान ये खोद ब्रिगेडियर डायर साहब को हुकुम जिए जोटी थी वे घोड़े की बाहर मंदिर रे कि मस्जिद रे गुरुद्वार रे कि तरुद्यान रे कोठा घरे कि कुड़िया घरे बजार रे कि रास्ता उपरे समस्ते मन मुन चैतन दे सुनिबा हेबे अद 1919 मसिया एप्रिल 13 तारीख रविवार सूर्य उदय रु जनरल साहेबंकर एई हुकुमनामा जारी हला। अमृतसर रे केई केबते बेले कि केउ थारे निजे स्लोगान देई पारिबे नाही कि दियाई पारिबे नाही शोभा यात्रा बाहर करि पारिबे नाही कि कराई पारिबे नाही आउ एक बा ଦୁଇ

0: मन बे जदि मो पाखरे अधिक गुली गोला थांदा तबे
1: यस यस कैरी ऑन कैरी ऑन
0: ओ आई वुड हैव फायर्ड एंड फायर्ड टिल आई पुट ऑल ऑफ देम टुगेदर
2: हे क्वाइट एन एक्सीलेंट आइडिया खूब चमत्कार चिंता तुमोर ब्रिगेडियर डायर
3: So you took the revenge.
4: It was too late, Your Majesty.
5: Dyer parama saubhagya je se mo hatru khosi jai heart stroke re hotat se poru chali gala. Au ta pare mo akhi roila jaliana wala bag bohana takar asali mukhya sadajantrakari Michael O'Dear upare.
3: But why?
5: Mo desabasi ki poko machi pai mariba ko nirdesh deithila ei Michael O'Dear. Taku khatam kariba ko मते कम कष्ट करबाक पड़नी धर्मावतार कम कष्ट करबाक पड़नी मो जेल जीवन रो अन्य एक करुण अध्याय स्वार्थंद भारतीय रो कथा सुनिले आपण भी ताकू घृणा करिवे स्वार्थ रो माया रे प्रलुब्ध होई गोटाए भाई ता जातिर आउ जणे भाई रो पिठरे छुरी भूसी दे परे एक कथा कोन आपण विश्वास करि परिवे माय लॉर्ड एबे सुद्धा अमृतसर रो गणिका नूरजान रो घर तार मुक सके मोर स्नायुर सहर रे से दिनर काल रात्रिटा एबे भी फूल परि सतेज हे रहिछि धर्मावतार
6: के
7: मु हंसराज कबाट कल नुजान
6: ए हंसराज अमृतसर स्वाधीनता संग्राम रो मुख्य संगठक हंसराज मो घर द्वार मुरे पुनी एते राती रे
7: अरे कबाट खोल नु जान
6: रो रो मु खोलु छी
8: बुझला ने नु जान गोटे विशेष दरकार पडिवरु एते राती रे कंपा को चली आसीबो भेला
6: माने
8: तमे आगो घर भितर चल ल खूबटा गुप्त कथा आछी
6: काहे की बारंडार कहले किछ असुविधा आछी
8: तम घर ऊपर पुलिस रो कड़ा नजर
6: काहे की मु से पुलिस रो की खेती करी छी हाउ तुमे तबे कहउछ आस हां कथा कोन बेगी बेगी कहिबटी
8: अ कथा कोन की
6: देर आती हलानी शीघ्र कोन कहिबार अछि कहिलो
8: नहीं मु कोन कहउतली की जण गोटे सुनिली उदाम सिंह कोड़े तम घर को ए टिक को आगु आसी छी
6: काई नहीं तो
8: हम तम घर बारंडा रे आगो बसिला तापर घर भितर गला से कोड़े किछ अस्त्र शस्त्र भी ता संगे आनी छी
6: नहीं ये सब मिछ कथा किए कहला तुमको
8: नूरजान उदाम सिंह भले देशभक्त पई केउ जाति गर्व न करबो कहला मु तारे भलो पई कहुछु
6: माने
8: कोनोसी आत्मयास्त्र रखिबा भारतिंग पक्षे खूब मारात्मक मु कोन कहुतले कि
6: आहे किछि त ठिकणा कथा कहुना आ खाली कोन कहुतले कि
8: हेडी तमे आगत को मोपा को डाकिल पुलिस वाला तार जेंत किछि खेतिक न कर परिबे मु ताको बते देबी से जिनस तो कोठ रखिले
6: कौन कहिल
8: आहा तमे ते भाबियो छ कोन म मत अविश्वास करछ मु प्राय देशर जने मुख्य स्वाधीनता संग्रामी
6: हां बुझिलि जे तेबे
8: किछे ल लुचान नुजान तमर किछे खेति होबनी गल ता कोठ लुचि ता केनि
6: बुझिला ना हंसराज बाबू बिचर से क्रांत होय सो जाई छी पर काली सकाळ को आस ता सहित तो कथा हो
8: हाउ तमे जितबेले कहू छ किंतु मन रख ता संगे मोर जिमति कालेश्वर निश्चय साक्षात हुए
6: हाउ हेला उदाम ए उदाम उदाम ए उदाम
9: के
6: ओ मु नुजान लाकु जी उठ उदाम
9: ओ तोडा किलो कथा कोन पुलिस वाला मो उपस्थिति संपर्क रे किछि सुराक पाइले कि
6: अरे पुलिस वाला नुहे मो से हंसराज बाबू आस्तिले
9: हंसराज माने
6: हम जो लोग जालियानावाल बाग हत्याकांड बेले सत्याग्रह रो नेतृत्व नहींथिले
9: ओ सेही हंसराज तांको सहित साक्षात केते जण को भाग्य रे जुटे जे तांको अग्निवर्षी भाषण थरे सुनीथिबो से केबे देशर डाकरा को एड़ेई दे परिबो ने
6: हौ से तो पुनी काली सकाळ को आसीबे एथरे भाबीबार कोन अछि
9: के कहिबो आसीबो कि न आसीबो अनेक कार्यक्रम भितर से टिके फुर्सत पाइले तो आसीबो
6: किए उत्तम

लिंगराज राय, मनिंदर रवि नारायण नायक, डिप्टी कमिश्नर दीपेन घोष, रतन देवी, निहारिका दास, नूर जहान, ममता रानी बेहुरा, छोटो उदम सिंह, गीताश्री दास एवं नाम भूमिका रे अनंत चरण भारती, रचना सुखदेव स्वाई, प्रयोजना हिमांशु भूषण सावत। श्रोता बंधु मैंने कार्यक्रम शुणी आकाशवाणी कटक केन्द्र शुणु श्यामामणि देवी कंठरे सुगम संगीत शिल्पी गाई गोपाल कृष्णंक रचना।

कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: अजणा लिंक क्लिक करंतु नै साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखंतु एसबीआई सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु
1: अच्छा दास बाबु आपणको घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सहीति पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखीतिली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
4: अभुलागित कार्यक्रम रे एथर गायचंती तनुजा महंती कंठरे हरिहर सेठी रचना।

पथचित्र तिल्हे तुम्हारा कण्ठशिल्पी अलका याग्नी कुमार सानु एवं उदित नारायण तेबे अनुरोधकारी श्रोता हेले डिहसाही कादुअपड़ा केन्द्रापड़ारू प्रमोद कुमार साहू।

0: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
1: कार्यक्रमर शेष गीत एक दूजे के लिए कथाचित्र गई अनुराधा पोडवाल एवं एसपी बाल सुब्रमण्यम तेज अनुरोधकारी श्रोता ब्रह्मपुर बुगुड़ा गंजाम नारायण प्रधान।

0: और हिंदी कविता।
1: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर।

0: ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृहमंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा।
2: ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण, एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक

भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकसित विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ଶୁଣିଲେ ନାରୀ ମହଲ।
1: ଆଚ୍ଛା ଦାସ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା 1970ରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ରାଇଟ? ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କେମିତି ଅଛି?
2: ଆରେ ଏଇଟା ଏକଦମ ସିମ୍ପଲ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲି, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚେଟିନାଡ ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ।
3: ଶକ୍ତି ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ବରଂ ପିଢି ପାଇ ରହିଥାଏ। ଚେଟିନାଡ ସିମେଣ୍ଟ ସୁପର ଗ୍ରେଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ, 64 ବର୍ଷର ଦୃଢ଼ ମୂଳ ଦୁଆ। ଚେଟିନାଡ ସିମେଣ୍ଟ, ଦ ପରଫେକ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ଚଏସ।
0: ମନ୍ କି ବାତ୍ ହେ ଜନ ଜନ କି ସଭି କି କୁଛ ଅପନି ସି, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: ड्रग कंट्रोल उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है।
1: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र दान हेरफेर मामलें 8 जनों के विरोध में दायर हुई प्रथम एतलाकु भित्ति करि उत्तर प्रदेश पुलिस सेमानंकु गिरफ करिछि। स्वतंत्र तदंतकारी दल एसआईटी द्वारा सुपारिश परे श्रीराम जन्मभूमि थाना एतला दायर करा जायछि। ट्रस्टर सदस्य कृष्ण मोहन एतला दायर करिछन्ति। एथिरे अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव एवं श्रीराम शंकर यादव नाम रहिछि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश अनुयायी गठित स्वतंत्र तदंतकारी दल अध्यक्ष भाव लखनऊ उपखंड सचिव विजय विश्वास पंत प्राथमिक रिपोर्ट आधार में गतकाली एतला पंजीकृत कर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्टक् आसुवा दान हेरफेर नहीं अभियोग यार तदंत स्वतंत्र तदंतकारी दल एसआईटी गठन कर द्वितीय पाक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में भारत अन्य 34 देश सह मिलित भावे कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रजुक्ति विद्या को सशक्त करने लगी एक प्रस्ताव स्वाक्षर करिछि। अमेरिका द्वारा यह पदक्षेपर नेतृत्व नियाजायछि। वाशिंगटन ठारे अनुष्ठित एही सम्मेलन में अमेरिकार अर्थनैतिक व्यापार विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग कहिछन्ति सम्मेलनने जोगदेइ अमेरिकार एआई पदक्षेपक समर्थन करुथिबा देशगुडिक विकास एवं नवसृजनक समर्थन करिछन्ति। एहि शिखर सम्मेलनने भारत पक्षरु इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्रालयर सचिव एस कृष्णन एवं भारतीय उद्योग जगतर प्रतिनिधिमाने प्रतिनिधित्व करिछन्ति। सम्मेलनने सेमिकंडक्टर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं प्रजुक्ति विद्या जोगाण श्रृंखल उपरे आलोचना करा जायछि। पाक्स सिलिका पदक्षेपक आर्जेंटीना, चिली, कोस्टारिका, जर्मनी, ग्रीस, कजाकस्तान, नेदरलैंड्स, पानामा एवं यूरोपीय संघ समर्थन करिछन्ति। गत फेब्रुआरी मासरे नुआदिल्लीरे अनुष्ठित कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलनरे भारत एही पदक्षेपरे सामिल होइथिला। नवीकरणीय शक्ति क्षेत्रे भारत विश्व नेता भावे उभा होइछि बोली जर्मन राष्ट्रदूत फिलिप एकरमान कहिछन्ति। एक संवाद संस्था सह कथाबार्ता बेले से कहिछन्ति भारत एवं जर्मन मध्यरे निरंतर विकास संबंधित सहयोग आगामी दिन में वाणिज्य राजनैतिक एवं रणनैतिक क्षेत्र में परिवर्तन आणिब। आजि देशव्यापी आसुराए महरम श्रद्धार सह पालन कराउछि। एहि दिनटि प्रफेट महम्मद नाति हजरत इमाम हुसैन और तांक साथीमाने सत्य धर्म एवं न्याय को बजाय रखिबा लागि निज जीवन उत्सर्ग करिथिबा घटनाकु स्मरण कराइथाय। एहि अवसरे विभिन्न स्थानरे ताजिया शोभायात्रा अनुष्ठित हेउछि। दिल्लीर जमा मस्जिद, निजामुद्दीन, ओखला एवं मोहरली सहित विभिन्न स्थानरु शोभायात्रा बाहरिछि। एहि अवसरे विभिन्न स्थानरे शहीदमानंक बलिदानकु स्मरण पूर्वक मजलिस ओ धार्मिक सभा आयोजन कराउछि। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन महरम अवसर में हजरत इमाम हुसैन सर्वोच्च बलिदान को सत्य एवं न्यायर प्रतीक भाव वर्णना कर सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे उपराष्ट्रपति कहते एही दिवस समाज में लोकमान शांति और पारस्परिक सम्मान दृढ़ करने दिगरे प्रेरणा जगाउछि। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे हजरत इमाम हुसैन कर्तव्यनिष्ठा समाज में सत्य एवं न्यायपूर्ण दिगरे जीवन अतिवाहित करने लगे प्रेरणा जगाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आसंता रविवार पूर्वाह्न 11 बेले आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में उद्बोधन देबे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात 135वां संस्करण हेबो। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल आप्रे उपलब्ध हेबो। यह मध्य आकाशवाणी, डीडी न्यूज, पीएमओ एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय यूट्यूब चैनल सीधा प्रसारण हेबो। हिंदी भाषा प्रसारण पर आकाशवाणी यह कार्यक्रम आंचलिक भाषातरण प्रसारण हो राति 8 आंचलिक भाषातरण पुनः प्रसारण हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय जन्मवार्षिकी अवसर में श्रद्धांजलि अर्पण कर सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे श्री मोदी बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय साहित्य जगतर एक उज्जवल तारका भाव वर्णना कर लेखा मध्यम देशप्रेम और सांस्कृतिक गौरव प्रतिपादित होती। प्रधानमंत्री कहते भारत वंदे मातरम जातीय संगीतर 150वां वार्षिकी पालन करुछी। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଭାରତୀୟ

0: Stadium. In another match, the Netherlands outclassed Tunisia by 3-1 in Kansas City to top Group F and set up a knockout clash with Morocco. In another Group F fixture, both Japan and Sweden stormed into the round of 32 as they played a 1-1 draw at the Dallas Stadium this morning. Japan will now face five-time champion Brazil in the next round. Ecuador also advanced to the knockout stage, beating Germany 2-1 in a Group E clash at the New Jersey Stadium early this morning. In men's hockey, India will face arch rivals Pakistan in its penultimate FIH Pro League match at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London this evening. The match is scheduled to begin at 10:20 p.m. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah calls for united fight against drugs, says drug menace poses threat to national security and future of youth. Uttar Pradesh police arrest 8 people in connection with Ram Mandir donation embezzlement case. India, along with 34 nations, signs US-led initiative to build resilient AI supply chains. Prime Minister Narendra Modi recalls sacrifices of Hazrat Imam Hussein on Muharram. In men's cricket, India to take on hosts Ireland in T20 International in Belfast this evening. All eyes on debutant prodigy Vaibhav Suryavanshi. And Australia qualify for knockout stage after goalless draw against Paraguay in Group D clash in FIFA World Cup. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान. कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा. उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया. भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमरीका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए. इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया. T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से. टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें. और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया. अब समाचार विस्तार से. गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है. उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की. श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की.
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है. आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय. और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए.
1: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं. उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा.
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं. ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है. इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी.
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की.

0: उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
1: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 2 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
3: For our business,
4: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
3: The 60,000 students
4: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं।

0: अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
2: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0

0: ने सहरा कर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंति रश्मिता दास। मुख्य संवाद विद्यालय पाठ्यपुस्तक त्रुटिजुक्त समस्त बही को फेरस्त अणाजिबा सह नूतन पाठ्यपुस्तक मुद्रण कराजिबो कहिले मुख्यमंत्री। लोकसेवा भवन में आज संध्या 2023 और 2024 वर्ष पर राज्य चलचित्र पुरस्कार प्रदान करिबे मुख्यमंत्री। विश्व निशा समस्या नूतन आह्वान एवं नवसृजन मध्यरे समाधान वार्ता नहीं आज पालन कराउछि आंतर्जातिक अवैध निशाद्रव्य कारोबार दिवस एवं देशव्यापी आज पालन कराउछि आसुरा ए महरम। प्रथमरु अष्टम श्रेणी पाठ्यपुस्तक त्रुटि संपर्कित तदंत रिपोर्ट आसंता सात दिन मध्य सरकार निकटे दाखल हो मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते। श्री माझी कहते राज्य सरकार घटना को गंभीरतार सह नेछन्ति। त्रुटिजुक्त समस्त बही को फेरस्त अणाजिबो नूतन पाठ्यपुस्तक मुद्रण सहित पुनः बंटन घटनार पुनरावृत्ति न होवा पदक्षेप।

0: ना ना तमे सेमिती कहनी मत ना जाति तो ये मनीष गढ़ी ईश्वर मात्र गोटे जाति को सृष्टि कर मनीष जाति पुरुष आ स्त्री
1: कहला कहीं मद पी मीबे आईबे मुझे तो बबा बजार पीछे आ दिने पीवा क्या कहू तो मारिक तो थुम बंद कर दे जानता बेस गोटे सियाणिया महिला लड़ा घंटी लोक मो मे ठकुच कहीं घंटी जाक लोक आने नई तो काचिक आसबु गलो राजणी बसबू ना कहला कहना मद कहीं पीछ।

0: കൈലാക്കന്നെ മദ് ഗാങ്ക് ഫ്യൂച്ചർ ബേസിയുടെ സിയായ
1: ভগবান কেতে কষ্ট দেব প্রভু কই কোড় গেল মোর সেই হাজিল দিন সব ফেরাই দিও মতো মহাজিল দিন ভগবান।

0: ये आश्चर्य महावीर राजा महाराजा एक परे आनु लक्ष्य भेद करिबाकु नुहंती समर्थ तेबे कौन व्यर्थ हेबो द्रौपदीर स्वयंवर सभा पिता राजगण हुंती विफल करंतु आह्वान बेगे अछि के ही ए सभारे धरुधारी वीर लक्ष्य भेदी पारिब मत्सर
1: हे पांचाल नरेश आज्ञा देबे अभिवय विप्र लक्ष्य भेद करिबाकु करिब प्रयास देखुछ नृपतिगण छार एक विप्र उपवित धारी क्षेत्र सहित निजकु से मने समकक्ष रे मूर्ख विप्र अकारणी करु दुस्साहस पारिबुकी करे धरी एई लक्ष्य बलधनु
2: शांत हो राजन्न मंडळी आसहे युवक विप्र शक्ति थिले कर लक्ष्य भेद
1: उत्तम हे द्वारकाधिपति हे अर्जुनर सखा विप्रस्थली मध्य करुछुब प्रणिपात पदे हे केशव शक्ति दियो मते जन्म मुई लक्ष्य भेद करिबि नाराचे
3: साधु साधु विप्रजवका साधु साधु साधु विप्रजवका

0: ममता ए ममता हेलो रह एमिते टाउटू हे चली जाउछ काई की
1: अरे नीलो मु भाबले तो चली गेलु बोली कोन काली रो समाज भल लागिला
0: इस काई के कहुछ से कथा
1: अर्जुन रोल केमती कला बदन बोला लाजरे मुह तळ करछु काई की मो ए कह ना
0: मते किछ पचार नलो ताको अभिनय कथा भाबले देह सीते उठुछि चमत्कार अभिनय से कले
1: कौन मनटा ताड़ को ढली गला किलो
0: चुपरी टोकी
1: कहमो केमिति दिशुला मदन अर्जुन बसरे
0: सतरे धनंजय पर दिशुला एका तु विश्वास करिबुनि ममता तांकर से मन भुला रूप मु आखि आखिरे खाली नाची जाऊची मन को मुठे आयत्र रखि पारुनी

0: टिके सहाय्य कर परबो ममता
1: कोन इंतु कहउछु म एमिति कोन हैला जे मो सहाय्य दरकार पड़ला
0: मिछ न होलो तू ये का मो पई से काम कर परबो
1: हौ कामटा कोन कह
0: तांको संगे मोर टिके परिचय करै दे परबो
1: आइ मदन संगे काहे कि
0: तांको अभिनय कला पई मो तांको धन्यवाद जणै थांते
1: हां एथि पई गोटे परिचय कोन दरकार म देखाले तको धन्यवाद ते जणै देबो कोन
0: ना ममता सेमिति ऊपर ठावरिया धन्यवाद ठो आहुरी अनेक बेसी तांकर प्राप्य सत कहुची तांक कथा रे सत जेमिति जातु अछि तांक चाहणी रे अछि चुंबक
1: तो मुंडा ठीक अछि त निय आलो से परे गां गोटा कर सेवाय त सबिंग मैला लुगा सफा करे तू ब्राह्मण घर रे छियो उच्च जाति ठाकुर क अंश तू पुणी
0: जाति अजाति रे विश्वास मोर नाही ममता मु जाने पुरुष आ स्त्री ए गोटाए जाति आ सेइति हला मनीष से मनीष भितर किए बड़ किए सान से कथा विचार करिवार अधिकार मनीषर नाही अछि भगवानंकर जे मनीष को गढ़ी बुझिलो
1: बापरे आदर्श हेले मु कहि रखुचि नील तू जब मदन रो चेहरा देखि भूली थाउ तेबे तू ठकि जिवु काहे कि जानु सेटा तर असली चेहरा नुह रंग पाउडर बखा नकली चेहरा
0: मु एते मूर्ख नहे ममता रंग मेखा चेहरा को देखि भळि जिबी तांको ऊपर चेहरा रु मते कोन मिलबो बरं तांको भीतरे जो गुणटा लुचि रहिछि सेइटा ही मते आकृष्ट करिछि तांको कला प्रतिभा मते मुग्ध करिछि ममता मनटा अपना छाय छाय तांको आडको टाणी हे जाउछि
1: ठीक अछि तू जदि प्रकृत रे मदन प्रति आकृष्ट मु ता संगे तोर परिचय करि देबि हैला तेबे गोटे शर्त रे
0: तोर पुनी के शर्त
1: आ से शर्तटा कोन जानु
0: कोन
1: जदि सतो सतो तू ताकु निजर करि बसु तेबे
0: तेबे कोहनु काहे कि ममता कौन तेबे
1: ए ना माने हे तो मु सबट बेसी खुशी हेबी
0: ममता
1: हो नीलो काहे कि खुशी हेबी जानू कारण मु सिना दुर्बल फिरु सेत पे तको निजर करि परलिनी किंतु मो बतरले रे को बांधु तो तको निजर करि परिछि
0: ममता तू तू सत कहछु ममता मदन को मु निजर कले तू सतरी खुशी हेबो कह ममता पूरी थरे कह कह ममता
1: अरे मला मला बतन तो घूरे दे तो मरमा ओ छाड़ मो कौन मदन रो फूल सारा तो देह सारा बिंधी होई लानी किलो
0: फाजिल कोठी कर
2: राम राम राम ये तुम की कथा कहो छो दीदी
0: काहे की मो कथा कण तुम्हारा पसंद होनी मदन
2: से कथा नहीं दीदी जेते हेले तमे मझिका स्कूल रो मास्टरानी तमर केते खातर सेतिर पण तमे का छुओ आखपाख दस खंड मौजरे तमो बापा सनातन गोसिंग को के नचिने तमे पण शेषरे
0: मु जहा चिंता करी छी सेइटा आउ कहा पई अभिगुणा हे परे मदन तेबे मु जाने मु कभी भूल करूनी
2: ना ने दीदी एते बड़ हेमत मोर कुळेबनी मु छार सेवात टाए गां लोकन को मैला लुगा सफा करू छी मो परे गोटे दरपाठुआ को
0: लुगा सफा करी तमे तो पाप करू न मदन परं अन्यर सेवा करी पुण्य अर्जुच बाकी रहिला जाति मो मनरे से जाति अजातिर संकीर्णता नाही मु जाने ईश्वर सृष्ट मनीष जाति एक आउ अभिन्न ता आखिरे कीट पतंग ठु ब्रह्म जाके समस्ते समान से गुण को आदर करी जाने मु सेई मनीष भितर जाने तमे पाठ साठ पढ़ी जा शिक्षित तो है भी तमे जे निज कुल व्यवसाय को भूलिन सेटा सबुठ बड़ कथा
2: किंतु दीदी मोर तो विश्वास होनी या कण केबे संभव
0: मनीष पक्षरे कोटा ही असंभव नहि मदन
2: हेले हेले इथे तमरो बेसी क्षति हबो दीदी लोके तमको छीछाकर करबे समाज तमको घृणा करबो गां लोकन को टाइटा परकु तमे कण सही पारिबो
0: लोकन को टिप्पणी को मु खातिर करेनी मदन ए समाज रो बड़ पंडा मानन को गुमर भी मोर अछपा नहि
2: किंतु दीदी मोर को गुण देखि तमे
0: जिए गढ़े सीए ता हाथकड़ा जिनिस गुण हुए तो कलना कर पारे ताको देखा लोक मैंने बुझाती तार मूल्य के ठीक सेमती तम भितर जो कला प्रतिभा लुचि रही कला ही दिने तुमको समस्त पाखे पूज्य कर प्रत्यय मोर रही
2: तमें जहा कह दीदी मत कहीं भारी डर लगुच
0: अरे ए डरबार कौन अच्छी लोके तो बर तुमको बाहा देवे से आखिरे बड़ जाति बोला गोटे सवर्ण झील को तम पर असवर्ण युवक निजर करी नहीं पार्छ बोली परिहास सरप्य।

0: कथा कहती तो घर स्त्री तो भी पूरी मुझे चलि कहीं तमें तमें मत पाठ पढ़ा कहल
1: तो कहू तोर पाठ पढ़ा कि दरकार ना बाहर गोटा सीणिया देखा चल सब चल कौन कह जी ना मुझे चल बेस गोटा सीणिया
0: हे भगवान ये पुणी की परीक्षा प्रभु ये तुम अभिशाप ना आशीर्वाद तेबे तेबे तुम आखिर भी मु कौन गोटे अपराधी नहीं सामाजिक बंधन भितर मुकुली शाश्वत बंधन में बांधि हमारे चेष्टा करवा तो कौन मोर भूल मु तो तुम्हारी सृष्टि जीव को आपणार करी मनुष्य समाज अंध को संस्कार विरोध में संग्राम करी सब सामाजिक आकर्षण को तच्छ कर तुम इंगित सब निंदा अपवाद को साउंडी नहीं गोटे तार पुरस्कार प्रभु
1: मो मद वेट कर पाठ पढ़ पाठ मास्टरणी हम आगे दोबार माइकिना दोबड़ी हबु दोबड़ी दोबड़ी हबु
0: पारुनि भगवान मुझे पारुनि
2: नील किए मु तो भीतर मनीष कौन कह ए कुंभीर कांदना कहीं सबू तो निज कलाकर्मर फल दुष्कर्म करम करदि करे कांदु कहीं परिस्थिति ए परिस्थिति को तो तू निजे निमंत्रण कर मोर अपराध पुरुष निर्वाचन रे भूल करिछु तू ना खाली पुरुष को नुह पुरुष पणिया को मनोनीत करिछि कौन अंध अर्जुन को अंध ना ना अंध होइथिले सात तल उच्च राधा चक्र उपरे माछ आखि को सर बिंदि थांदा केमिति से लाख बिंदिबार कौनसी वैचित्र नाही सेइटा कृत्रिमतार आलेख्य से कृत्रिमता भितर मु सत्यर संधान करी प्रतिभा सत्य नुहे नील चरित्र ही सत्य शाश्वत ना ना ना प्रतिभा ही सत्य तारी भितर अच्छी व्यक्तित्व अनाथ प्रतिफलन तेबे तो आखिरे लुह कहीं जो आदर्श को जीवन व्रत करिछु गोटाए दुस्साहसिक पदक्षेप नहीं छु ये सामान्य विघ्न पाई एत विचलित तो कहीं हाँ तमें ठीक कह दुर्बल है मो आदर्श दुर्बल ही पड़ मुत हेले मो शपथर अग्निकणा निर्वापित हो मत ना मु तुमको तले पड़ा को देवी तुम पुणी थे उठ अर्जुन कांडीब टंकार दश दिग प्रकंपित है तुमरी प्रतिभा लाल सूर्य समग्र विश्व बलय को रंगीन कर
3: बेस तेबे तू यही शपथ कर नील कह मु नील धवणी हेबी
2: ना मु नील धवणी हेबी
3: मु पाठ पढ़वी
2: हाँ मु पाठ पढ़वी
3: मु हेबी नील मास्टरणी
2: हाँ मु हेबी नील मास्टरणी
4: नीला अलाया नीला

0: साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मन रखु SBI सचेतन रुहतु सुरक्षित रुहतु।
1: अच्छा दास बाबू आपण घर टा 1970 या राइट एपर्त स्ट्रंग के
2: अरे एकदम सिंपल मुझे मोर विश्वास रखी थी आज चेटिनाड सीमेंट
3: शक्ति जहाँ वर्ष वर्ष नुहे बर पीढ़ी पाई रही था चेटिनाड सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्ष दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: प्रचार करुछु कार्यक्रम जुबो बाणी।

0: ଶୁଣିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବବାଣୀ।
1: ଆଚ୍ଛା ଦାସବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା 1970ରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ରାଇଟ? ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କେମିତି ଅଛି?
2: ଆରେ ଏଇଟା ଏକଦମ ସିମ୍ପଲ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲି, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚେଟିନାଡ ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ।
3: ଶକ୍ତି ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ବରଂ ପିଢ଼ି ପାଇ ରହିଥାଏ। ଚେଟିନାଡ ସିମେଣ୍ଟ, ସୁପର ଗ୍ରେଡ ସିମେଣ୍ଟ, 64 ବର୍ଷର ଦୃଢ ମୂଳ ଦୁଆ। ଚେଟିନାଡ ସିମେଣ୍ଟ, ଦ ପରଫେକ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ଚଏସ।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म।

0: वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अपन माने कार्यक्रम सुनुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररु।
2: नमस्कार श्रोता बंधु, संध्या 6 मुख्य संवाद सहित मु आदित्य नारायण दास अपन मन को स्वागत करुछि। विद्यालय पाठ्यपुस्तक त्रुटिजुक्त समस्त पुस्तक को फेरस्त अणाजीवा सह नूतन पाठ्यपुस्तक मुद्रण कराजिबो कहिले मुख्यमंत्री। राज्य में शिल्पायन वातावरण को अधिक सुदृढ़ करने लक्ष्य मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज भुवनेश्वर में सीआईआई पूर्व आंचलिक परिषद में जोगद लोकसेवा भवन में आज सन्धार 2023 और 24 वर्ष पर राज्य चलचित्र पुरस्कार प्रदान करेंगे मुख्यमंत्री। तमिलनाडु तिरुवल्लूर गैस लिक दुर्घटन ओडिया श्रमिकों मृत्यु संख्या 11 को वृद्धि पाई। राज्यर समस्त हॉस्टल को पीएनजी संयोग करने उच्च शिक्षा विभाग पक्ष निर्देश दिया जाए छी। पुरी श्रीमंदिर में आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में चंपक द्वादशी नीति पालन करा जाए छी। देशव्यापी आसंता रविवार मंगलवार पर्यंत पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम अनुष्ठित हेब। सामाजिक स्थिरता और अर्थनैतिक विकास दिगरे अंतराय पलटिथिबा निशाद्रव्यर मूलोत्पाटन पर सामूहिक उद्यम लगी आह्वान देले स्वराष्ट्रमंत्री। विश्व निशा समस्या नूतन आह्वान एवं नवसृजन मध्य समाधान वार्ता नहीं आज पालन आंतर्जातिक अवैध निशाद्रव्य कारबार दिवस। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र दान तुषारपात मामलें 8 जन को गिरफ्त कला उत्तर प्रदेश पुलिस। द्वितीय पाक्स सिलिका शिखर सम्मेलन 34 देश सह कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रजुक्ति विद्या प्रस्ताव में स्वाक्षर कला भारत। केन्द्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर में शहीद होता 6 जवान नाम को सार्वजनीन कर। श्रद्धार सह आज देशव्यापी पालन असुरा ए महरम। भेनेजुएला रे संगठित भूमिकंप रे मृत्यु संख्या 235 को वृद्धि पाई एवं भारत आयरलैंड मध्यरे आज अनुष्ठित हेब चलित सीरीजर प्रथम आंतर्जातिक T20 क्रिकेट मैच। श्रोताबंध वर्तमान पर मुख्य संवाद प्रसारण ये शेष होगा। आपण मैंने परवर्त मुख्य संवाद छुणीपरि राति 7। नमस्कार।
0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
3: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
4: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
3: यहाँ होती।

0: है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूं कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्ष

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अपन मन कार्यक्रम सुनुछन्दि आकाशवाणी कटक केन्द्ररु सुनंतु चलित अधिवेशनर कार्यक्रम संपर्कर सूचना। गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीरामचरित मानसर 60तम भाग संध्या 6:10, ओडिया आलबम गीत संध्या 6:30, राति 17:02 ओडिया कथचित्र गीत। जिला हालचाल शुणे देवगढ़ जिला संपर्क में राति 17:25, पल्लीमंच राति 17:30, एणवे निशा सेवन जुवपीढ़ी केते विपज्जनक ए संपर्क में अमरेन्द्र जेना सहित आलोचना। हिंदी चलचित्र गीत राति 8:02, इंग्राजी कार्यक्रम राति 8:30, एणवे सेईंग गुड बै टू ए लंग टोमाटिक ए संपर्क में डॉ अश्रुमचंद साहू सहित आलोचना करेंगे तरुण कांति राउत। सांप्रतिक घटनावली संपर्कित कार्यक्रम राति 9:30 रिले कर प्रचार कर आकाशवाणी दिल्ली। नाटक धूम्राभ दिगंत प्रचार कर राति 10:02, मूलगल्प मनोज दास, बेता रूपांतर घन विहारी महाराणा, प्रयोजना रवि शतपथी। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में महाराजापुरम संतनमगर परेशित कर्णाटक पद्धतिर शास्त्रीय गान शुणे राति 10:30। आसंताकालीर कार्यक्रमर सूचना। भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना सकाळ 6:05, अनुचिंता सकाळ 6:35, उपस्थापना कवि प्रसाद मिश्र। श्रीमद भागवतर 78तम भाग सकाळ 6:40, सकाळ 7:10 आमर स्वास्थ्य एथिरे शुणिबे जोग माध्यमरे अंटाविंधा समस्यार निराकरण। आलोचना करिबे प्रतिभाश्री। प्रभात परिक्रमा सकाळ 7:25, सकाळ 7:35 कार्यक्रम ठिक कुहंतु ठिक लेखंतु, एथिरे शुणिबे निसंशय अभिव्यक्ति। आलोचक डॉ धनेश्वर महापात्र। चिरसबुज सकाळ 7:40 कंठशिल्पी मनमथ मिश्र, गीतारणी दास एवं साथी। वैदेहिक विलासर 68तम भाग सकाळ 8:45, नाटक गणेशंक सुंड प्रचार करिबो दिन 10:00, मूलगल्प डॉ जयंत महापात्र, बेता रूपांतर प्रबोध कुमार राउत, प्रयोजना दीपक सामंतराय। अभुला गीत दिन 11:10, कंठशिल्पी स्निग्धारणी कर एवं अजय कुमार शतपथी। पाला दिन 11:30 परिवेषण करिबे सुरेन्द्रनाथ छोटराय एवं साथी। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रचार करिबो दिन 12:30। मुंडारी गीत दिन 9:10 परिवेषण करिबे बुधराम सिंह एवं साथी। दिन 9:20 नारी महल आलापुरे शुणिबे आकस्मिका स्वप्नाश्रींग सहित साक्षात्कार। आम आईन दिन 2:45 शुणिबे कन्याभ्रूण हत्या आईनटी कौन ओ यार आवश्यकता काहीक रही ए संपर्क में आलोचना करिबे आईनजीवी उषाराणी पाढ़ी। पीपुल्स पद्म आकाशवाणी अपराह्न 3:10 रिले कर प्रचार करिबो आकाशवाणी दिल्ली। कार्यक्रम किशोर चक्र अपराह्न 5:00 शुणिबे विद्यालय दिने राज्य मैट्रिक टॉपर आशुतोष नायक सहित साक्षात्कार। युववाणी प्रचार करिबो अपराह्न 5:30। गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीरामचरित मानसर 61तम भाग संध्या 6:10, झुमर गीत संध्या 6:30, कंठशिल्पी अर्घ्य रूपा महांती। जिला हालचाल शुणिबे ढेंकानाल जिला संपर्क में राति 17:25, बनानी राति 7:00।

वन में भटकते हुए प्रताप भानु को एक आश्रम दिखाई दिया जिसका निवासी एक ऐसा राजा था जिसे युद्ध में प्रताप भानु ने कभी परास्त किया था और वो अब मुनि के कपटी वेश में अज्ञातवास कर रहा था। उसने प्रताप भानु की खूब आवभगत की।

0: 빌리루.
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः. आदौ मुख्य वार्ताः. गृहमन्त्री अमितशाहः मादकद्रव्यानां विरुद्धं संयुक्तसंघर्षस्य आह्वानं कृतवान्. तेन प्रतिपादितं यत् मादकद्रव्यानां विभीषिका राष्ट्रियसुरक्षायाः यूनां भविष्यस्य कृते च संकटं जनयति. अयोध्यायाः राममन्दिरदानराशिस्तेयप्रकरणे अष्टौ जनाः निगडिताः. पैक्सिलिका सन्धौ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपूर्ति श्रृंखलायै भारतेन सह चतुस्त्रिंशत् देशानां हस्ताक्षरं जातम्. मुहर्रम पर्वणि प्रधानमन्त्रिणा हजरत इमाम हुसैनस्य त्यागाः संस्मृताः. अपि च क्रीडावार्तासु यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायां भारतस्य युवा क्रीडकः रौनक चौहानः चीनी ताइपे क्रीडकं चौ तिएनचेन इत्यमुं पराजित्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्राविशत्. अथ वार्ताः विशदीकृत्य. गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन अद्य मादकद्रव्यानां विरुद्धं संयुक्तसंघर्षस्य आह्वानं विहितम्. मादकद्रव्यानां प्रकोपः राष्ट्रियसुरक्षायै सामाजिकस्थिरतायै आर्थिकहिताय यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति. सः आध्यात्मिकनेतृभ्यः युवभ्यः मातृभ्यः अस्य संघर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुं च आग्रहम् अकरोत्. श्रीशाहः नवदिल्ल्यां नार्को कोऑर्डिनेशन केन्द्रस्य दशमशीर्षस्तरीय सभाम् अभिसम्बोधयन् एतानि वक्तव्यानि प्रायच्छत्.
2: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है. आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय. और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए.
1: श्री शाह अवोचत् यत् चतुरोत्तरद्विसहस्रतः चतुर्दशाधिकद्विसहस्रपर्यन्तम् अधिकारिणः प्रायः 26 लक्ष किलोग्राममितं संश्लेषित मादकद्रव्याणि गृहीतवन्तः. तस्य अपेक्षया 14-द्विसहस्रतः 26-द्विसहस्रपर्यन्तं गृहीतानि संश्लेषित मादकद्रव्याणि 8.11 मिलियन किलोग्राममितं यावत् वर्धितम्. सः अवोचत् यत् मादकद्रव्याणां व्यापारस्य विरुद्धं सर्वकारस्य अभियानम् अविरतं प्रगतिं कुर्वदस्ति इति अंकैः ज्ञायते. मादकद्रव्याणां निवारणस्य प्रयत्नानां विषये श्रीशाहः अवोचत् यत् नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इत्यनेन मादकद्रव्याणां अपराधसम्बद्धानां सूचनानां समयोचित आदान प्रदानार्थम् अनेकानि ऑनलाइन पटलानि विकसितानि सन्ति.
2: पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस. इसका उद्देश्य पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें. दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल. उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य अवोचत् यत् नशा मुक्त भारत अभियानम् जनसहभागित्वेन चालितं जनान्दोलनं जातम्. मादकद्रव्य मुक्त भारत निर्माणस्य महत्व विषये सामाजिक न्याय सशक्तिकरण राज्यमन्त्रिणः बी.एल्.वर्मणः लेखं विनिमयीकुर्वन् श्रीमोदी एतत् अवोचत्. उत्तर प्रदेश आरक्षकेण श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासस्य दानराशिस्तेय प्रकरणे FIR इति प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण 8 जनाः निगडिताः. इदं तावत् प्राथम

0: इस तक 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थनिक बनाना है और 2027 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तक हम।
1: मुख्यमंत्री श्री माझी कहिछन्ति ओडिशा एबे खनिज भित्तिक अर्थनीतिरे सीमित न रही स्टील आलुमिनियम पेट्रोकेमिकल्स सेमिकंडक्टर आदि उद्योग उपरे ध्यान केन्द्रित करुछि। कार्यक्रमरे शिल्पमंत्री संपद चंद्र स्वाईंक समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित थिले। आपण माने आंचलिक संवाद सुनुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। भुवनेश्वर लोकसभा भवन सम्मिलनी कक्षरे 2023 और 2024 वर्ष पई राज्य चलचित्र पुरस्कार प्रदान उत्सव अनुष्ठित होउछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कार्यक्रम में जोगदे चलचित्र पुरस्कार प्रदान करुछन्ति। गतकाली ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग पक्षरु संस्कृति मंत्री सूर्यवंशी सूरज मनोनीत कलाकार नाम घोषणा करथिले। 2023 मसीहा पई पुष्करा ओ माई स्वीट हाउसवाइफ को श्रेष्ठ चलचित्र भाव मनोनीत करा बेले अभिनेत्री सुप्रिया नायक ओ नैना दास को श्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री भाव मनोनयन करा। श्रेष्ठ अभिनेता भाव हरिहर महापात्र चयन करा। मो बऊ मो गां को श्रेष्ठ प्रामाणिक चलचित्र सम्मान पई चयन करा। श्यामलेन्दु भट्टाचार्य को मोहन सुंदर देवगोस्वामी सम्मान पई चयन करा। 2024 मसीहा पई आश्रम को श्रेष्ठ चलचित्र भाव मनोनीत करा जायथिबा बेले पावार चलचित्र पई बाबूसान महांती श्रेष्ठ अभिनेता और भग्या भारिजा चलचित्र पई देवजानी देघुरिया श्रेष्ठ अभिनेत्री भाव चयन करा। बलांगीर जिला लोईसिंगा तहसील सिंघाणी मुंडाठारे भूमिहीन हिताधिकारी घरडीह पटावंटन और जगह चिन्हटीकरण कार्यक्रम अनुष्ठित होइजैछि। स्वास्थ्यमंत्री डॉ मुकेश महालिंग कार्यक्रम में जोगदे 99 जन भूमिहीन हिताधिकारी जमी आवंटन और 20 जन घरडीह पट्टा बंटन करथिले। राज्यर समस्त हस्टेलकु पीएनजी संयोग करने उच्चशिक्षा विभाग पक्ष निर्देश दिया। आसंता 30 तारीख सुधा ए संपर्कित रिपोर्ट दाखल करने को आंचलिक शिक्षा निर्देशालय को विभाग पक्ष पत्र लिखाई। पीएनजी उपलब्ध थिबा स्थानगुडिक तुरंत संयोग जोगाइदे निर्देशनामा उल्लेख कर। बलांगीर भीमभोई मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल स्थित प्रेक्षालय जिला शिक्षा विभाग पक्ष आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव एवं स्वास्थ्यमंत्री डॉ मुकेश महालिंग चलित वर्ष मैट्रिक परीक्षा में कृतित्व अर्जन कर 211 जन छात्र छात्री संबर्धित कर। अवसर डॉ महालिंग कहते जातीय शिक्षानीति आज युवपीढ़ी को केवल पुस्तकगत ज्ञान नुहे बर व्यवहारिक कौशल और गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर। स्वास्थ्यमंत्री आज लोईसिंघा ब्लक गस्त करी सोलार पंप रामलीला मंडप और टांगरपाली नवनिर्मित गोष्ठी केन्द्र उद्घाटन करथिले। गजपति जिला सीमांत अंचल ओडिशा नृत्यर प्रचार प्रसार पर पारलाखेमुंडीठारे तीनदिनिया जातीय ओडिशा नृत्य कर्मशाला अनुष्ठित होइजैछि। केन्द्र संस्कृति मंत्रालय सहयोग में आयोजित कर्मशाला बहुसंख्यक नृत्यशिल्पी जोगदे नृत्याभिनय संपर्क ज्ञान अर्जन करथिले। अतिरिक्त भीड़ ह्रास करिबा उद्देश्य रे आज पूर्वतट रेलपथ पक्षरु भुवनेश्वर और लोकमान्य तिलक टर्मिनस मध्यरे एक स्वतंत्र एक्सप्रेस ट्रेन चलाचल करिबो। ट्रेन नंबर 08407 भुवनेश्वर लोकमान्य तिलक स्वतंत्र एक्सप्रेस ट्रेन आज राति 11टा रे भुवनेश्वर छाड़िबो एवं 28 तारीख सकाळ 9टा रे लोकमान्य तिलक रे पहुंचिबो। क्रीडा मंत्री सूर्यवंशी सूरज पारा बैडमिंटन खिलाड़ी आकाश रंजन मुन को संबर्धित करिछन्ति। तुर्की आयोजित वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट्स यूथ गेम्स 2026 कलाहांडी पारा बैडमिंटन खिलाड़ी आकाश रंजन मुन दुईट स्वर्ण और दुईट रौप्य पदक हासिल कर राज्य पर गौरव आनी। क्रीड़ामंत्री श्री सूरज आकाश को उज्जवल भविष्य कामना कर। मुसलमान संप्रदाय पक्ष देशव्यापी आज आसुरा ए महरम पालन कर। एहि दिनटी प्रफेट मोहम्मद नाती हजरत इमाम हुसैन और तांको साथीमाने सत्य धर्म एवं न्याय को बजाय रखिबा लागि निज जीवन उत्सर्ग करथिबा घटना को स्मरण कराइथाय। एहि अवसर रे विभिन्न स्थान रे ताजिया शोभायात्रा अनुष्ठित हेउछि। पाणिपाग राज्य रे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सक्रिय रहिछि। मौसुमीर प्रभाव में राज्य विभिन्न स्थान में वर्षा लागि रहिछि। आगामी पांच दिन पर्यंत वज्रपात सह वर्षा हेबा नै पाणिपाग केन्द्र पक्षरु प्राय समस्त जिल्ला को सतर्क करा जाइछि। अन्य पक्षरे गरम गुळगुळी नै 12टी जिल्ला को पाणिपाग केन्द्र पक्षरु सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। मुख्य संवाद पुनि थरे विद्यालय पाठ्यपुस्तक त्रुटि मामलार तदंत करुथिबा कमिटी पक्षरु राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रदान। रिपोर्ट आधार रे चारिजण को निलंबन कले मुख्यमंत्री। पूर्वांचल रे शिल्पायन प्रक्रिया को त्वरान्वित करने आरंभ हेबो गो ईस्ट प्लेटफॉर्म। 2023

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज

0: ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रूपये है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केन्द्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में एचएसबीसी के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत यूके व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत

0: सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि खतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु

0: और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देशभर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्वकप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Center to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximize benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends 2 Air Force planes with emergency relief material. US and Iran agree to establish direct military communication channel to reduce risk of further conflict, says US Vice President J.D. Vance. Indian shooters finish at the top in ISSF Junior World Championship in Germany with 24 medals, including 7.

0: ଶୁଣିଲେ ନାଟକ ଧୂମ୍ରାଭ ଦିଗନ୍ତ। ନାଟକର ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମାନବେନ୍ଦ୍ର, ଅଭୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ନବୀନ ବ୍ରଜକିଶୋର ନାୟକ, ହଟୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ତ୍ରିପାଠୀ, ହାଡୁ ମାନବେଶ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଲିଲି ଭୂମିକାରେ ଥିଲେ ଆକାଂକ୍ଷା କବି। ନାଟକ ଧୂମ୍ରାଭ ଦିଗନ୍ତର ମୂଳ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ରଚନା ମନୋଜ ଦାସ, ବେତାର ନାଟ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କରିଥିଲେ ଘନବିହାରୀ ମହାରଣା, ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଥିଲେ ରବି ଶତପଥୀ, ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ ସହଯୋଗିତା କ୍ରିଷ୍ଣା ମହାନ୍ତି।
1: ମନ୍ କି ବାତ୍ ହେ ଜନ ଜନ କି ସଭି କି କୁଛ ଅପନି ସି ସଂଘର୍ଷୋ କି କୁଛ କିସ୍ସେ କାହାନୀ କୁଛ ସଫଲତାଓ କି ଅନକହି ବିରାସତ କି ଉମ୍ମୀଦେ ନୟେ ଭାରତ କି। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: अपन माने कार्यक्रम सुनचंदे आकाशवाणी कटक केन्द्र प्रचार करुछो महाराजापुरम संतनंकर शास्त्रीय गायन।

0: तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित

0: एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी और अमरीकी सैन्य के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अपन माने कार्यक्रम सुनुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररु।
2: नमस्कार, आज अंतिम मुख्य संवाद सह मु उदयनाथ स्वाई। निशामुक्त भारत अभियान जनसाधारणक सहभागितारे एक गण आन्दोलनर रूप नेछि कहिले प्रधानमंत्री। भेनजुएला भूमिकम्पे मृत्यु संख्या 599 कु वृद्धि। भूकंप परवर्ती सहायता पई भारत पक्षर आरंभ हला ऑपरेशन अमिस्टैड। भारत पठाइला 35 टन रु अधिक रिलीफ सामग्री और जीवन रक्षाकारी औषध। भारत और भूटान मध्यरे शिक्षा, दक्षता एवं ज्ञानर आदान प्रदान को सशक्त करने क्षेत्र में सहमति प्रकाश कले उभय देश। षोडश भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में जोगदेवा लगी आसंता मास पहिलारु भारत गस्तरे आसिबे जापान प्रधानमंत्री। विद्यालय पाठ्यपुस्तक त्रुटि मामलार तदंत करुथिबा कमिटी पक्षरु राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रदान। रिपोर्ट आधार में 4 जन को निलंबन कले मुख्यमंत्री। पूर्वांचल शिल्पायन प्रक्रिया को त्वरान्वित करने आरंभ हो गो ईस्ट प्लाटफर्म। 35 और 36तम राज्य चलचित्र पुरस्कार प्रदान। ओडिया चलचित्र आम जातिर अस्मितार परिचय। खूब शीघ्र प्रणयन हो नूतन चलचित्र नीति। पुरस्कार प्रदान समारोह जोगदे कहिले मुख्यमंत्री। पारादीप पौरांचल विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्प समीक्षा कले मुख्य शासन सचिव। जर्मनी में खेला जाउथिबा अंतर्जातीय बंधुक चालना क्रीड़ा महासंघ आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 7 स्वर्ण पदक सह शीर्ष स्थान में भारत। फिफा विश्वकप्र ग्रुप आई रे आउ किछि समय परे नॉर्वे फ्रांस को भेटुथिबा बेले अन्य एक मैच रे सेनेगल और इराक मध्य प्रतिद्वंदिता हेबो। दुईटी जाक मैच भारतीय समय राति 12:30 आरंभ हेबो। मौसुमी वायु प्रभाव में राज्य अधिकांश स्थान में सामान्य मध्यम वर्षा होपे। आगामी 24 घंटा मध्य बिजुली खड़खड़ी सह वर्षा संभावना नहीं 19 जिला को सतर्क सूचना जारी कला आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। मुख्य संवाद आज नमस्कार, शुभरात्रि।

आकाशवाणी कटक आरंभ करुछु भक्तगीतर कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम प्रथम भक्तगीत गाई प्रणव किशोर पट्टनायक गौर पट्टनायक रचना बंदे तो पयरे मा काले काले हुआ साहा हाथ थरी मोर मा को कढ़ाई नियतुरा।

0: अच्छा भाई आज किसी न कही एमती सीधा सीधा कुआडे जाऊ छ
1: तमे मो सहित आस
0: वडे
1: एटी देखिला एटी देखो एटी कोन लेखा हिची कहिला
0: लेखा जाय छी कोन तो हा पढुच पढुच श्री गुरु इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्टडीज सिम्स
1: हां आज एमे सिम्स विषय रे बहुत कथा जानिबा
0: अच्छा भाई ए जगार ना कोन
1: जगतपुर आसो भीतर को जिबा बोले के देखिबा आसो
0: अरे बा की सुंदर परिवेश कैंपस सारा कित्ते गच्छ
1: अरे खुशी एते किनु हे भीतर को आसो आउरी कित्ते कथा जानिबा
0: खाली मु जानिबी ना हम श्रोता मानन को भी जणाइबा
1: ठीक कहिछ हम श्रोता बंधु भी सब कथा जानिबे ताले आरंभ करिबा
0: हो शिक्षा अंधार भितर आलोकर संधान दिए शिक्षा जीवन को श्रृंखलित करिथाय जनजीवन रे शिक्षा आत्मनिर्भरशील पथ देखाई थाए एकविंश शताब्दी रो दुनिया रे टेक्नोलॉजी रो विकास संग को शिक्षादान क्षेत्र रे मध्य नूतन सूर्य उइछि वैषयिक शिक्षा जगु आज हजार हजार छात्र छात्री निजर कर्मसंस्थान बाछि पारुछन्ति एथिपाई उच्चमानर शिक्षानुष्ठान आवश्यकता रहिछि सेमिति एक शिक्षानुष्ठान श्री गुरु इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्टडीज जहाँ कटक शहर उपकंठ जगतपुर ठारे अवस्थित आसंतु ए संपर्क रे अधिक जानिबा अनुष्ठान रो चेयरमैन श्री त्रिलोचन राय को पाखरु
2: श्री गुरु ट्रस्ट रो चेयरमैन तापर श्री गुरु ट्रस्ट अंडर रे श्री गुरु इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्टडीज एटा जगतपुर कटक रे हमर आ गुटे संस्था श्री गुरु आईटी अछि से भी जगतपुर कटक रे पाखा बिके एटा 18 वर्ष हेलानि तो पिला मन पे अनेक सुविधा सुजोग अछि प्रथम जिन चाहू जे आमे प्लेसमेंट को गुरुत्व दउ छु जो पिला मन हम पकरे टेक्निकल एजुकेशन नउ छंदी तांको समस्तिंग प्राय चाकरी करेवार व्यवस्था हम करि छु भलो भलो इंडस्ट्री से आमे टाइप करि छु पिलांको टेक्निकल एजुकेशन परे परे आमे तांको माने प्लेसमेंट करै पारुछु स्पोर्ट्स एवं कल्चर ऊपर मध्ये कल्चरल एक्टिविटी एवं एनुअल टेक्निकल फेस्ट मध्ये हम करू एथिकल जोटा नैतिक शिक्षा मध्ये दिया होची जोटा को पिला मानको भविष्यत रे बड़ मनुष्य करिवे रे सहायक।

0: अच्छा खुशी मत कह के लगला ये शिक्षा अनुष्ठान
1: बहुत भल परेश अध्यक्ष अध्यापक अध्यापिका पिला माने समस्त जमिति भारी आपणार लागिले
0: हौ आज कथा सेतिक थाउ टिके घंटा को चाहिलो
1: अरे सते तो
0: ताले आजर कार्यक्रम को श्रोता बंधु एटी रखुछु कार्यक्रम संपर्क।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं।

0: सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोता बंधु, सामाजिक गणमाध्यम बा सोशल मीडिया विधुर विरुद्ध रे अभियोग रो तालिका बे बहुत लंबा, विशेष कर छोट छोट पिला और युववर्ग भितर एपर एक निशा आई जाए एथर सहजे मुकुल पार ना से छोट छोट पिला गेमिंग और रिल्स भितर एत निमग्न हो जाए से धीरे धीरे निद्राहीनता एकग्रता पाठपढ़ मनोनिवेश आदि व्याघात सृष्टि सहित दृष्टिहीनता मानसिक अस्थिरता हिंस्रता आदि लक्षण मान देखाला युववर्ग भितर अनुरूप लक्षण देखा सहित अश्लील आचरण उश्रृंखलता हत्या आत्महत्या प्रवणता एवं एकाकित्व देखा गलानी।

चका चका भरी कथचित्र गोटे गीत शुणा इच्छा कर प्रमोद कुमार साहू डीओ साई कादुआपड़ा जगत सिंहपुर आमेश्री आज आपण गीत मिल रेडियो खोली बस थे शुणु थे गीतटी गई रतिकांत शतपथी और तृप्ति दास।